सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: लुम्बिनी शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।